0: बच्चे बच्चे हमारे को चारा बच्चे कोई नान ढंग आंदा से ना अन्य मोटा कन मानस आकवा कहता कोई चक होरी इंतेन उच्चर तो ती चंका चाचा को ती पकड़ मातियां तो मैं ब्लक ती पंते कौन जेन बच्चे मात्ती तो नान ढंग सुंगू मात्ती Wargu cara sungguh mati jadi penasaran. Wah kepiye engger wargu turut
1: bikin rata tinggal untak bocah arbani karo wong tu.
0: Wargu turut aku karo melayu jongger aku cota tinggal wargu turut.
1: Bocah katar itu leget-leget uramu bahuramu si Aryo wargu turut. Ing patos ngabak-abake Aji Bandung Bondoso Toyo panguasane Aji Bandung Bondoso kinaryo tindak sak jangkah bisa kasembatan ingkang den jongko cuka trampil tengginas nyaut pandito durno kadyo lakuning tatip sak kedepini tro prapto projongastino